0: कृष्ण पार्वत देव सबे मुनि इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पारा वारिया
1: अंत न
0: पावत देव सबे अंत न पावत देव सबे।

दुनिया उते इस संसार उते इस संसार दे जिया उते कलगियां वाले पातशाह ने अज दा दिहाड़ा पवित्र दिहाड़ा मनांदिया होया खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास पातशाह फरमान करते ने ये जो खालसा है ये मेरा ही रूप है खालसे मैं हूं करो निवास मैं इस खालसे विच ही निवास करता हां जो नीच जातां दे अखोती हन गरीब हन मजलूम हन कलगियां वाले पातशाह ने बख्शिशां कीतियां बढ़िया रहमतां कीतियां दर्जा दिता अपना रूप ही बना लिया सुआओ सा संगत जीओ अज के दिहाड़े नूं पवित्र जानदिया होया आपां सारे जाने

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इनू ए पता लग गया।

ये चार कुरैतां छड़ देन ते पांच कतारां विच पक्के हो जान रैत रखन वंड के छकन।

बख्शिश कर दी है। ए मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा सिबरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भूल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनु धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आपनू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान पर एक दिन मंजे ते पैजे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी

हर राखे पैज जन केरी। महाराज वचन करदे ने ये सतगुरु का बिरद है, जिवें मां अपने बच्चे नाल प्यार करदी है इदा सतगुरु प्यार करदे ने। ज्यों जननी सुत जन पालती, राखे नजर मझार, अंतर बाहिर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार। मां कर दे सारे काम कर दिए, जो ड्यूटी है पूरी कर दिए, घर दी संभाल कर दिए, पर ध्यान बच्चे च है। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत पिया। फिर महाराज कहते ने जैसी गगन फेरंती उड़ती, मां ते आप बुरकी तोड़ के बच्चे दे मुंह च पाउंदी है। परमेश्वर किड्डा बेअंत है, एक जानवर आकाशा विच उड़न वाला कूंज सया कूहां ते चली जांदी है, पर ये ध्यान नाल ही बच्चे पालदी। ध्यान ना उड़े उड़ आवे सह कोसां, तिस पाछे बचरे चले। वह मिसाल दे के सतगुरु समझा रहे ने, जासी गगन फेरंती उड़ती, कपरे वागे वाली, ओ राखे चीत पीछे पिछ बचरे, नित हिरदे सार संभाली। त्यों सतगुर प्रीत सिख हर हर की, गुरसिख रखे जी ना। एक होर मिसाल दिंदे ने, मूंह च दंद ने, जबान है, दंद जबान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ते जबान नू दंदा तो बचन वास्ते कोई उपराला भी नहीं करना पैंदा। ए मिसाल दे के जिवे जबान महफूज है, जीते ओ मेर कर देवे, ओ दयालु हो जावे, ओ इस संसार विच भी दुखियां विच भी ओ महफूज है, जिदा दंदा दे विच किरी होई जबान महफूज है।

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछु है न कोई रंग मजिठों निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या टिस्को न सथोई बेमुख सुके रुख ज्यों बेमुख सुके रुख ज्यों

कुत्ते हलत मन सुगावे, ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे, ज्यों चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे, जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे, वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने ना विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंश घात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए, फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए, व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए, विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए, मन हठ न घटे चोआ चंदन पर हरे, खरखे पलटे क्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे, अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे अपन हथ।

सिर छार उड़ावे। तुम में अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम होने सत्संग न पाए, मूर्ख सच न जाननी। निंदक नाम भी होने सत्संग न पावे, अन्ना आगू जेठिए सब सा

छोटे छोटे पीस जिहड़े हैगे उह शस्त्रां दे चाल दिखांदे आ। असीं शस्त्र दे पूजे कर रहे हां हुणे। इह शस्त्र नाम माला है। असीं शस्त्रां दे गिणदे आ, उहदे नमस्कार करदे आ। यही हमारा पीर। बस माफ करना भी मैं शब्द रोक लिया, पर मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा जिहड़ा आनंद सानू आ रहा सी रियाज दे विच, थोड़ा तुहानू पता लग

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी

जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नू पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नू अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़।

उस वे मां ने पिट से हाथ रखिया, कह लगी कलाकार मैं कोई नहीं हूं, तेरे मन च भुलेखा ना रह जा। मैं कलाकार कोई नहीं हां, मेरे अंदर जिसने घड़िया सी ना तेनू असली कलाकार। मत हंकार में आई, मेरे अंदर पै हो तेनू वह घड़ रहा सी, ते तेरे हथा च बैठा वो पत्थरां दे बुत भी घड़ सकता है, तेरे हथा च बैठा वो चित्र भी घड़ सकता है, असली कलाकार तो वो है। मत किते भुलेखे दे विच भरिया आ हंकार नाल भर जावे, अज तू मेरे नाल ते बाप नाल उच्चा होण दी कोशिश कर रहे, कल नूं निरंकार नूं चैलेंज कर पवे, ईश्वर नूं चैलेंज कर रवे, प्रभु नूं चैलेंज कर पवे, ना काका किते हंकार च ना भर जा। तू फिर बच्चा ही है, तू फिर बाल ही, आपां सारे बाल ही। असली कलाकार, असली घाटा घड़न वाला, प्रतिपालना करने वाला तो वो है। तैनू छोटे जहनू बाल रूप दे के ते फिर बाल तो जवान करना, जवान तो तेरे बाप वर्गा महान करना है, उन्हें हाथ में मत कि भुलेखे च रहे। जे तो यह बिरती बनी रहे तो बंदा बड़ा शांत रहता, फिर तो मत लैन जोगा भी रहता है, गुरु की मत लैन जोगा, मापिया की गुरमत सुमत लैन जोगा, प्रभु के भय च भी रहेगा। लेकिन जे बंदा हंकार नाल भर जावे, समझे मैं ही कलाकार हां, मेरी मत वधिया है, फिर गुरु की मत किथे रखेगा, मां बाप की सिख्या किथे रखेगा। पहला तो यह समझ लईए, साडा जन्म अपने आप नहीं, जन्म देने वाले मां बाप बैठे ने, मां बाप के उत्ते वो बैठा है, असली बाप बैठा है। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौ ने तेरा अखुट भंडारा, तरह तरह के पदार्थ बख्शन वाला बैठा है, जेता निगाह ओदे ते रही बड़ी शांति रहेगी। महाराज सच्चे पातशाह उस ते निगाह पुआंदे, कहिंदे ओदे बालक बन के रहिए जिसने